0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील. और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं. आज के शो में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है. 1 जुलाई से लाखों एम्प्लॉयज को 4.75% वेज इंक्रीज मिलेगा, 4.75%, जबकि सबसे कम वेतन पाने वाले कुछ वर्कर्स की इनकम में करीब 6% तक की बढ़ोतरी होगी. ट्रेड यूनियंस ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन बिजनेस ग्रुप्स और अपोजिशन का कहना है कि इससे कॉस्ट बढ़ सकती हैं और महंगाई पर असर पड़ सकता है. माफ करिएगा, इसी रिपोर्ट से शो की शुरुआत करेंगे और उसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट जिसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें. फिर लेकर आएंगे SBS हिंदी की फाइनेंस सीरीज मनी मैटर्स का 3रा एपिसोड जिसमें हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में साइड हसल्स और कैश जॉब्स करने वालों की टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कौन से लीगल ऑब्लिगेशन जरूरी हैं और इससे जुड़े क्या रिस्क होते हैं. तो मनी मैटर्स का ये एपिसोड जरूर सुनिएगा अगर आप भी अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ साइड हसल्स या कैश पे जॉब करते हैं. और अंत में सिडनी के ब्लैक टाउन सिटी फेस्टिवल की एक झलक जहां स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे में मल्टीकल्चरल सेलिब्रेशंस देखने को मिले. भारतीय समुदाय सहित कई ग्रुप्स ने अपने कल्चर, म्यूजिक और ट्रेडिशंस को एक बड़े ही वाइब्रेंट तरीके से शोकेस किया. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके और बहुत सारे गाने हैं आज, एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी गाने होंगे जो बीच बीच में हम आपके लिए प्ले करते रहेंगे. तो एंजॉय करते हैं आज का शो और शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज फ्लैश के साथ जिसमें है ऑस्ट्रेलिया की कुछ खास खबरें, कुछ भारत से और कुछ विश्व से. बुधवार 3 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के जवान आने वाले हफ्तों में पोलैंड भेजे जाएंगे जहां वो रशिया के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे. रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक नॉर्वे के नेतृत्व वाले एक ऑपरेशन में शामिल होंगे जिसमें उन्हें बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स, लीडरशिप और मिलिट्री स्किल्स सिखाई जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया 2023 से यूनाइटेड किंगडम आधारित एक ऑपरेशन के जरिए इसी तरह का समर्थन दे रहा है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि यूक्रेन के पास ट्रेनिंग देना ज्यादा सही है. एक डिफेंस समिट में रिचर्ड माल्स ने कहा कि यूक्रेन को समर्थन देना रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जरूरी है. विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप पनडुब्बी समझौते में हाल ही में हुए बदलावों का बचाव किया है. जबेड ह्यूजिक ने कहा कि सरकार को इस पर फिर से बातचीत करनी चाहिए. लेबर पार्टी के बैकबेंचर ने कहा कि पार्टी के अंदर इस समझौते को लेकर कुछ असंतोष है और उन्होंने सरकार से अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से विचार करने की अपील की है. रक्षा समझौते को लेकर चिंताएं तब और बढ़ गईं जब ये घोषणा हुई कि ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से केवल सेकेंड हैंड न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां ही खरीदेगा. हालांकि चैनल 9 के टुडे शो में बातचीत के दौरान पेनी वोंग ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह के वोट की संभावना को खारिज कर दिया. पूर्व कैनबरा लिबरल्स नेता लियान कैसले ने पार्टी से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया है. यह कदम उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पद छोड़ने के 7 महीने बाद उठाया है. यरबी के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली लियान कैसले ने कहा कि पार्टी में टॉक्सिक कल्चर है और अब वो इसका हिस्सा नहीं रह सकती. उन्होंने कहा कि अब वो इंडिपेंडेंट के रूप में काम करेंगी और उन्होंने 18 महीनों तक बुलिंग, इंटिमिडेशन, झूठ और धमकियों का सामना करने का आरोप लगाया है. लिबरल नेता मार्क पैटर्न ने टॉक्सिक कल्चर के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन कहा है कि संगठन ने बुलिंग से जुड़ी चिंताओं को संबोधित किया है. ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट से जुड़े स्कैम्बलिंग स्कैम्स में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. टेलस्ट्रा के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डैरन पॉली ने कहा कि तेजी से बढ़ने वाले ऑनलाइन खतरों में स्कैम गैम्बलिंग यानी अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट से जुड़े स्कैम्स भी एक हैं, जहां लोग पहले से ही हर साल लगभग 2.2 अरब डॉलर अलग अलग तरह की फाइनेंशियल ठगी में खो देते हैं। ये स्कैम्स अक्सर आसान जीत का लालच देते हैं और फिर लोगों को पे आईडी जैसे माध्यमों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, जिससे पीड़ितों को आर्थिक नुकसान के साथ उनके बैंकिंग डिटेल्स और पहचान दस्तावेजों का भी खतरा होता है। टेलस्ट्रा ने कहा कि उसने इस साल लगभग 1800 गैम्बलिंग से जुड़े डोमेन्स ब्लॉक किए हैं, जिससे 2 मिलियन से अधिक संभावित विजिट्स रोकी गई हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ने मिसाइल हमले किए हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गल्फ रीजन में हमले करने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि उसने बहरीन में स्थित यूएस 5th फ्लीट के मुख्यालय को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान के खश्म आईलैंड पर सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए, जो तेहरान की ओर से किए गए कथित हमलों के जवाब में थे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। और अब खबर भारत से। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वो जनता के समर्थन पर भरोसा कर रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है और कहा है कि उन्हें ये संगठन देशभक्त और देश सुधार के लिए त्याग करने वाला लगा। सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि पहले उन्होंने इस समूह पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में अभिजीत डिपके से बातचीत और समर्थन से जुड़े आंकड़े देखने के बाद उन्हें भरोसा हुआ कि इसका कोई छिपा उद्देश्य नहीं है। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो की पहली रिपोर्ट आपके लिए प्ले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लाखों कर्मचारियों को 1 जुलाई से 4.75% वेतन वृद्धि मिलेगी, जबकि सबसे कम वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों की आय लगभग 6% तक बढ़ेगी। श्रमिक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन व्यापारिक समूहों और विपक्ष का कहना है कि इससे व्यवसायियों पर दबाव बढ़ सकता है और भविष्य में महंगाई पर भी असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।

0: ऑस्ट्रेलिया में लाखों कर्मचारियों को जुलाई से वेतन में 4.75% की बढ़ोतरी मिलने वाली है। ये फैसला फेयर वर्क कमीशन की वार्षिक वेतन समीक्षा के बाद आया है। श्रमिक संगठनों ने इस बढ़ोतरी का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। वहीं व्यापारिक संगठनों का कहना है कि इस कदम से महंगाई और बढ़ सकती है तथा व्यवसायों, खासकर छोटे कारोबारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और अब आइए सुनते हैं इस खबर को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया भर में लाखों कर्मचारियों को 4.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। फेयर वर्क कमीशन ने अपनी वार्षिक न्यूनतम वेतन यानी एनुअल मिनिमम वेज और अवार्ड वेतन दरों की समीक्षा के बाद ये फैसला सुनाया है। फेयर वर्क कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एडम हैचर ने इस निर्णय की घोषणा की। नई वेतन दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।
1: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
0: पिछले वर्ष 3.5% वेतन वृद्धि और अप्रैल में 4.2% की वार्षिक महंगाई दर के बाद वास्तविक वेतन और महंगाई के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार जून के अंत तक महंगाई 4.8% तक पहुंच सकती है। ऐसे में इस अंतर को पाटने के लिए 5% वेतन वृद्धि आवश्यक मानी जा रही थी। हालांकि जस्टिस हैचर ने कहा कि आयोग का मानना था कि इतनी बड़ी वृद्धि देना ना तो विवेकपूर्ण होगा और ना ही व्यावहारिक।
1: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
0: जीवन यापन की बढ़ती लागत यानी बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग इस निर्णय के केंद्र में रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई का असर घर परिवारों के बजट पर गहराई से पड़ रहा है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फेयर वर्क कमीशन ने सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वेतन वृद्धि की घोषणा की। कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एडम हैचर ने कहा कि सबसे निचले स्तर की मॉडर्न अवार्ड वेतन श्रेणियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के कारण सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वास्तव में लगभग 6% तक वेतन वृद्धि मिलेगी।
1: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this is that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
0: Australian Council of Trade Unions यानी ACTU ने वेतन में 6% वृद्धि की मांग की थी, जो मंजूर होने पर रिकॉर्ड की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि होती। हालांकि आयोग ने इससे कम वृद्धि को मंजूरी दी, फिर भी ACTU की अध्यक्ष सैली मैकमैनस ने कहा कि फैसले का स्वागत किया गया है।
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise, absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
0: वहीं नियोक्ता संगठनों यानी एम्प्लॉयर ग्रुप्स ने वेतन में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी की मांग की थी। उनका तर्क था कि 6% की वृद्धि से व्यवसायों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी ACCI ने 3.5% वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। संगठन का कहना था कि अप्रैल में 3.4% रही अंतर्निहित महंगाई दर यानी अंडरलाइंग इन्फ्लेशन वेतन वृद्धि तय करने के लिए अधिक उपयुक्त मानक है। ACCI के नीति प्रमुख डेविड अलेक्जेंडर का कहना है कि इस फैसले के बाद कई व्यवसायों, विशेषकर छोटे और मध्यम कारोबारों को अतिरिक्त आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
3: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
0: फैसले से पहले फेडरल सरकार ने सतत और संतुलित वेतन वृद्धि की वकालत की थी, लेकिन उसने किसी निश्चित प्रतिशत की सिफारिश नहीं की थी। फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने कहा कि ये वेतन वृद्धि वही है जिसकी ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को आवश्यकता थी और जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला कामगारों को बढ़ती जीवन यापन लागत से राहत देने में मदद करेगा।
4: This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
0: हालांकि इस फैसले का सीधा असर लगभग 5 में से एक कर्मचारी पर पड़ेगा और ये राष्ट्रीय वेतन व्यय यानी नेशनल वेजेस बिल का केवल 11.2% हिस्सा ही है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की मांगों पर पड़ सकता है। विपक्ष के रक्षा मामलों के प्रवक्ता जेम्स पैटरसन ने स्काई न्यूज से कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ये वेतन वृद्धि आवश्यक थी, लेकिन लंबे समय तक इसे टिकाऊ नहीं मान सकते। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती वेतन लागत भविष्य में व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है।
5: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
0: SBS न्यूज से सिडनी लैंग की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने।

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ेंगे और इंडिया रिपोर्ट सुनेंगे जिसमें भारत की कुछ खास खबरें आपको लिए हम लेकर आते हैं. लेकिन उससे पहले आज के शो का सवाल, और शो का सवाल ये है, और हम एक्चुअली वो जुड़ा है हमारे SBS हिंदी की एक नई श्रृंखला हमने शुरू की है मनी मैटर्स, जिसमें हम फाइनेंस की जानकारी आपके लिए आसान भाषा में और सरल तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं. इस सीरीज के 6 एपिसोड्स हैं और आज हम उसका 30 एपिसोड आपके लिए प्ले करेंगे. और आज का जो थीम है वो होगा साइड हसल्स या कैश जॉब्स. इसी से जुड़ा है हमारा सवाल कि हम में से कई लोग जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं और अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम कोई ना कोई साइड जॉब, साइड हसल या एक्स्ट्रा कुछ कमाई के लिए कोई ना कोई जॉब हमने शायद करी होती है. वो स्ट्रगलिंग डे में भी हो सकता है और शायद वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए भी हो सकता है. तो आप ने ऐसी कौन सी जॉब करी है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बस लिख भेजिए, जैसे कि रेस्टोरेंट में काम करना या शायद कैब ड्राइविंग करना. और 04397997667 हमारा नंबर है, आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा. और अभी बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं इंडिया रिपोर्ट, जिसमें होंगी भारत की खास खबरें.
8: भारत और वेनेजुएला अपने संबंधों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने को लेकर समझौता होने की संभावना है. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से भारत की यात्रा पर हैं. उनकी इस यात्रा के दौरान ऊर्जा के अलावा स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा. 5 दिनों की उनकी यात्रा के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं,
9: ड्यूरिंग द विजिट प्रेसिडेंट रोड्रिगेस, एक्टिंग प्रेसिडेंट सॉरी रोड्रिगेस, विल होल्ड बायलैटरल डिस्कशंस विद प्राइम मिनिस्टर. द डिस्कशंस विल इन्वॉल्व द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया वेनेजुएला रिलेशंस एंड एक्सप्लोर एवेन्यूज फॉर फर्दर कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एनर्जी, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. As part of the program, they will be visiting several sites. India, as you know, India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
8: नेपाल के साथ सीमा विवाद पर भारत ने कहा है कि इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. भारत का बयान ऐसे समय आया है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह चीन और ब्रिटेन से दखल देने की मांग कर रहे हैं. भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच विवाद के ज्यादातर मामले सुलझा लिए गए हैं. रणधीर जायसवाल ने बताया कि 98% सीमा निर्धारण पूरा हो चुका है.
9: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है. फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है. गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
8: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE इन दिनों विवादों में है। बोर्ड का ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में लगातार किरकिरी को देखते हुए सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनकी जगह लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं वरुण भारद्वाज को सचिव पद की जिम्मेदारी मिली है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की घोषणा भी हुई है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है जो OSM में सेवाओं के टेंडर और अलॉटमेंट में गड़बड़ी की जांच करेगी। सरकार के इस कदम को विपक्ष ने लीपा पोती बताया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। और अब चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी TMC को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में TMC को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से पार्टी में असंतोष गहराता जा रहा है। चुनाव बाद हिंसा में पार्टी नेताओं पर हमले भी हुए हैं। इसी के विरोध में मंगलवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना दिया। राज्य की नई भाजपा सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए ममता बनर्जी कहती हैं,
10: अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम

0: पढ़ने दीजिए, हमारा एमपीएमएलए को दौड़ मार्क दिखाइए, हमारे लोगों को एरेस्ट मार्क का मार्क कीजिए। आज 200 से ज्यादा लड़का को आपका गवर्नमेंट एरेस्ट जो किया है, एक पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है, माइनॉरिटीज कमीशन इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने देता है, एफआईआर करने नहीं दिया।
1: ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी के ज्यादातर विधायक ममता बनर्जी से दूर हो रहे हैं। कल के धरना प्रदर्शन में भी ज्यादातर विधायक नदारद ही रहे। पार्टी के 80 में से 50 विधायक अपना अलग गुट भी बना सकते हैं। भाजपा ने टीएमसी के सारे आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे टीएमसी की आंतरिक कलह का परिणाम बताया है। और अब चर्चा तेलंगाना राज्य की। मंगलवार को राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के गठन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: कांग्रेस सरकार ने बड़े वादे किए हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस अवसर पर कहा,
4: जिन्होंने इस तेलंगाना के निर्माण में अपने जीवन की आहुति दी, संघर्ष किया, आज के दिन निश्चित रूप से उनको नमन करने की अपेक्षा नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके संघर्षों के लिए निश्चित रूप से उनके सपनों का तेलंगाना जैसा बनना चाहिए शायद अभी भी उस दिशा में हम पीछे हैं और हमारा सपना भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि निश्चित रूप से हम तेलंगाना के विकास के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे।
3: तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में आज डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना है। डीके शिवकुमार के साथ 12-13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंगलवार को डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की नई दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में मंत्री परिषद को लेकर आपसी सहमति बन गई है। दलित नेता जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
5: SBS हिंदी पर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुनी भारत की कुछ खास खबरें इंडिया रिपोर्ट में, और एड ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन एड ब्रेक से पहले एक मैसेज पढ़ेंगे। आज हमने एक सवाल पूछा था कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में या तो पहली जॉब या वो एक्स्ट्रा जॉब कौन सी थी या कौन सी है जिससे शायद आपने अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा कमाई की हो। तो जफर जी का मैसेज आया, वो लिखते हैं कि माई फर्स्ट जॉब वॉज डोर टू डोर सेल्स और बड़ा अच्छा अनुभव था, और उस चीज ने, उस डोर टू डोर सेल्स ने, इट हेल्प मी टू नो द रूरल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 0439-799-767 हमारा नंबर है, उस पर आप भी मैसेज करके बताइए एक एक्स्ट्रा जॉब या शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी पहली जॉब की। और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज हमारी एक खास श्रृंखला मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड है, जो एक फाइनेंस सीरीज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल भाषा में और सरलता से बता पाएं फाइनेंस से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। और आज उसका थीम है कैश जॉब या फिर साइड हसल्स, जो काफी लोग ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, उन्हें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टैक्स ऑब्लिगेशन होती हैं और कई और पहलू। तो वो रिपोर्ट आपको सुनाएंगे एड ब्रेक के बाद, लेकिन एड ब्रेक और एक गाना उसके बाद, तो सुनते रहिए SBS हिंदी। मिलता हूं मैं आपको एड ब्रेक के बाद।
6: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
7: Ek doctor hone ke nate, main sara din alarm sunti hun. Monitor ke, call ke buttonon ke. Par ek alarm hai जो केवल आप सुन सकते हैं, आपके भीतर का। मरीज और उनके प्रियजन उन पहले लोगों में हो सकते हैं जिनकी नजर में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए यदि आप अस्पताल में हैं और महसूस करते हैं कि आप या आपके किसी प्रियजन की हालत बिगड़ रही है, तो याद रखें, आपकी आवाज मायने रखती है। न्यू साउथ वेल्स के किसी भी पब्लिक अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में आपकी चिंताएं व्यक्त करने के लिए रेज इट

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
2: एड ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. और अगली रिपोर्ट पर जाने से पहले अब मौका हो गया है एक गाने का, तो प्ले करते हैं गाना आपके लिए और उसके बाद वापस आएंगे और प्ले करेंगे आपके लिए मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड. तो एंजॉय करिए गाना. मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में.

0: SBS हिंदी पर वापस एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की जो अगली रिपोर्ट है वो है SBS हिंदी की खास श्रृंखला मनी मैटर्स से जुड़ी। आज हम उसका तीसरा एपिसोड प्ले करने वाले हैं और इसी से जुड़ा आज शो का सवाल भी है कि आपने अपनी फर्स्ट जॉब या फिर जो साइड हासिल है जिसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है वो कौन सी करी ऑस्ट्रेलिया में, और हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आप ही प्लीज़ भेजिए 0439-799-767 पर। आज के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि साइड हासिल्स और कैश में जो काम करते हैं उनके लिए हमारी टैक्स से जुड़ी कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं या कमिटमेंट्स होती हैं और क्या क्या खतरे भी हो सकते हैं। इस सीरीज को आप तक लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा। आइए प्ले करते हैं मनी मैटर्स SBS हिंदी के फाइनेंस से जुड़ी खास श्रृंखला का तीसरा एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं
0: मनी मैटर्स
1: SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आपका स्वागत है SBS हिंदी की श्रृंखला मनी मैटर्स के अगले एपिसोड में। आज का टॉपिक है एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है पर शायद खुलकर कोई पूछ नहीं पाता, साइड हसल्स और कैश जॉब्स के टैक्स इम्प्लिकेशंस। हम इसे कई लोग वीकेंड पर ऊबर चलाते हैं, कुछ डोर डैश पर फूड डिलीवर करते हैं, कुछ ट्यूटरिंग करते हैं, या फिर कोई घर से खाना बनाकर बेचता है, या फिर कोई एटसी या इंस्टाग्राम पर चीजें बेचता है, और कुछ लोग रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग में भी कैश में काम करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ATO को इन सब के बारे में बताना जरूरी है? सीधा जवाब तो है हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप जहां से भी पैसा कमा रहे हों, चाहे वो बैंक में आए या कैश में या फिर किसी ऐप के जरिए, उस इनकम को टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना जरूरी है। और ATO के पास आज पहले से भी कई ज्यादा टूल्स हैं ये पता लगाने के कि आपकी इनकम कहां से आ रही है। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुनीत सिंह, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी में। अगर कोई थोड़ा थोड़ा साइड पर कमा रहा है और उसने डिक्लेयर नहीं किया है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या इसे बिना मुसीबत में आए फिक्स करने का कोई तरीका है?
2: जी डेफिनेटली, आज के टाइम पे ATO के पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं विद दी एनहांसमेंट ऑफ AI। ATO के पास काफ़ी ऐसे टूल्स हैं कि वो डेटा मैचिंग कर सकते हैं, खासकर आपके बैंक्स का एक प्रॉपर रिकॉर्ड ATO के पास जाता है। कोई भी इनकम आप ले रहे हो, चाहे वो ऊबर से ले रहे हो, चाहे वो एटसी से ले रहे हो, ये रिकॉर्ड जो होता है वो साझा किया जाता है ATO के साथ। खासकर जो ये डिलीवरी राइट शेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनका एग्रीमेंट किया गया हुआ है ATO के साथ, दे हैव टू रिपोर्ट ऑल द इनकम टूवर्ड्स ATO ऑफ देयर रिस्पेक्ट पीपल। सो आज के टाइम पे अगर आप पैसा कमा रहे हो और आप ये सोचते हो कि ATO को नहीं पता लगेगा, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा झूठ है। आई थिंक ATO को पता है, विद द हेल्प ऑफ डेटा मैचिंग वो सब जानते हैं ये सारी चीजें ट्रेसेबल है। स्वाति, इसे फिक्स करने के लिए अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप इनकम डिक्लेयर की करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं जो आम दिनों में आई होती है, जैसे आप ऊबर चलाते हो, एक ऊबर एक्स चलाते हो, एंड क्या होता है कि ऊबर जब इनकम डिक्लेयर करता है ATO को विद डेटा मैचिंग, वो ग्रॉस इनकम शेयर करता है, बट जब जो क्लाइंट होता है वो ATO को अपनी GST लॉन्च करता है, वो क्या करता है कि जो ऊबर ने अपनी कमीशन काटी होती है उसके बाद जो नेट इनकम होती है उस पर वो GST, तो वो डेटा मिसमैच हो जाता है। सो इसलिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जो ग्रॉस इनकम होती है उसी पे आप अपना GST कीजिए, और जो उनकी कमीशन है उसको आप एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो अगर आपने GST दी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जब ऑडिट्स आने का डर रहता है।
1: एक बहुत बात चलती है कि कैश जॉब एंड नो टैक्स, क्या ये सच है कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में, और कि या फिर ये पूरी तरह से मिथ है? और अगर कोई कैश में जॉब कर रहा है तो ATO को पता कैसे चलता है?
2: देखो, एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज यहाँ पर ट्रेसेबल है। अगर एक एम्प्लॉयर किसी को कैश में दे रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम दैट एज एन एक्सपेंस, राइट? वो अपने बिजनेस में एक्सपेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका इनकम ओवर

0: एक्सपेंस नहीं हो रहा, तो वहीं पर एक रेड फ्लैग शुरू हो जाएगा। अगर किसी को कैश मिल रहा है, बीइंग ए सिटीजन और बीइंग ए टैक्स रेजिडेंट, उसका ये फर्ज बनता है कि वो एटीओ को अपनी सारी इनकम डिक्लेयर करे। ऐसा ना हो कि दो साल बाद उसको ऑडिट आ जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको वो पैसे वापस देने पड़े, जो उसका टैक्स अदा करना उसको वापस देना पड़ सकता है।
1: तो जो लोग अभी अपना कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी है या ट्यूटरिंग है, उन्हें सबसे पहले कौन सी तीन चीजें सेटअप करनी चाहिए ताकि वो शुरुआत से ही सही रास्ते पर रहें?
0: जी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एक सही सलाहकार से मिलें, जो एक अच्छा रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा, आपको कौन से स्ट्रक्चर पे जाना है। बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप सोल ट्रेडर से भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड है, देन आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि वो फैमिली ट्रस्ट या यू नो बिजनेस कंपनी सेटअप करे। बट उसमें भी आपको स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं, देर आर क्वाइट गुड रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर यू गो टू दैट। तीसरा हो गया कि अगर आपने उसको किस लेवल तक लेके जाना है, ब्रांडिंग करनी, आपका एक विजन है, तो डेफिनेटली आपको ब्रांड वैल्यू पे भी काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली बिजनेस नेम भी आपको लेना पड़ेगा, वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी और मार्केटिंग प्लान भी होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा सलाहकार आपको मिल जाता है, यू वुड बी एबल टू डेफिनेटली गेट दीज थ्री थिंग्स सॉर्टेड।
1: जी पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, टैक्स स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन, फेक एटीओ कॉल्स, फ्रॉड एजेंट्स, व्हाट्सएप पर स्कैम, और क्या चैट जीपीटी से टैक्स के सवाल पूछना सेफ है। ये सब होगा अगले भाग में। एसपीएस हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद। एसपीएस हिंदी की नई श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
3: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है, SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
4: SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी कुछ मैसेजेस पढ़ने का समय आ गया है। ईशा लिखती हैं कि हाय, आई डिड मेनी ऑड जॉब्स व्हेन आई केम हियर सेवरल इयर्स अगो। रेस्टोरेंट में काम किया, ब्यूटी सैलून में थ्रेडिंग का काम किया, शुरू के सबसे मुश्किल दिनों में किए थे ये सब काम, एंड थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच ईशा अपना मैसेज भेजने के लिए, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी चैलेंजेस होते हैं लोगों को शुरू में अपनी मेन जिस चीज में वो जॉब करना चाहते हैं उसमें अपना एक पोजीशन और अपॉर्चुनिटी अवसर पाने के लिए, तो वक्त लगता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपने अभी सुना SBS हिंदी की फाइनेंस से जुड़ी श्रृंखला मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड, जिसमें आज हम बात कर रहे थे कैश जॉब्स और साइड हसल्स की। इसके कुल 6 एपिसोड्स हैं जिसमें हमने कोशिश की है स्वाति शर्मा ने खासतौर पर कि फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको बहुत सरल भाषा मिले। तो ये पूरी सीरीज आपको SBS हिंदी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप जरूर इसको जाकर सुनिएगा। और इसी से जुड़े कुछ रील्स यानी वीडियो कंटेंट भी आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब वक्त हो चुका है एक और गाने का, एक और गाना सुनेंगे और उसके बाद एड ब्रेक, और वापस आकर आज के शो में एक आखिरी रिपोर्ट। आप भी अपना मैसेज करिए जब तक 04397997667 पर कि आपकी वो पहली जॉब या वो एक्स्ट्रा जॉब कौन सी थी जो आपने ऑस्ट्रेलिया में आकर करी थी। चलिए मिलता हूँ आपको इस गाने के बाद, सुन रही है SBS हिंदी।

0: advertising.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Hey, कि क्या आपने भी ऐसी कोई जॉब की है और एंजॉय किया है? उस चीज को कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और अगर आप उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मनी मैटर्स का जो तीसरा एपिसोड है आप आज उसको हमने प्ले किया रेडियो शो पे, हमारी वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं sbs.com.au/hindi पर. चलिए, इस वक्त हो गया है एक वक्त गाने का, वो गाना सुनेंगे, वापस आएंगे एक आखिरी रिपोर्ट के लिए और रिपोर्ट के बाद आपसे लूंगा अलविदा, क्योंकि हमारा शो के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं. चलिए एंजॉय करिए गाना, मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी सी देर में.

0: advertising.
1: Con Spectrum TV, no me pierdo ni un partido.
2: Employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance.
1: Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
4: हमारी सामूहिक शक्ति भी है। SBS हिंदी के लिए ब्लैक टाउन से मैं हूँ शशि कुमार।
5: SBS हिंदी पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं लूंगा आपसे अलविदा और इस वादे के साथ कि किसी और दिन किसी और शाम फिर से मुलाकात होगी इस शो के जरिए। और 04397997 हमारा नंबर है, अपने मैसेजेस जरूर भेजते रहिए और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा, हम हर एक मैसेज जरूर पढ़ते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो 04397997 हमारा नंबर है। और एक आखिरी गाने के साथ चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मेरा नाम है नबील और बने रहिए SBS हिंदी के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे नबील शौकत अली की आवाज़ में ये गीत, और एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनवाएंगे कि स्कूलों, दफातर और दीगर अवामी मुकामात पर आप ऑस्ट्रेलिया के कौमी झंडे के साथ जो एक और झंडा देखते हैं, सुर्ख, सियाह और पीले रंग का झंडा, उसकी तारीख क्या है और इंडिजीनियस लोगों से उसका कल्बी ताल्लुक क्या है। इसके अलावा आपको कैनबरा भी लिए चलेंगे और वहाँ भारतीय और पाकिस्तानी लोगों ने मिलके कव्वाली की एक खूबसूरत बज़्म सजाई, उसका जिक्र रहेगा। साथ ही पाकिस्तान के हालात हाजरा की बात होगी और ऑस्ट्रेलिया आए हुए मारूफ गुलोकार सलीम जावेद से खूबसूरत बातें और उनकी गीतों की झलकियों के साथ कुछ ना कुछ आपके लिए शेर सुखन का रंग लेकर आएंगे। ये सब कुछ थोड़ी देर बाद। आइए चलते हैं एक वक्फे की तरफ, मगर हमारे साथ रहिएगा।
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.

0: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। मैं मोहम्मद रहीम शामी, प्रेसिडेंट ऑफ यूसी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। मेरे साथ मेरी वाइस प्रेसिडेंट आयुषा इम्तियाज एंड हेरा मौजूद है। हम आज की कवाली होस्ट, वी आर द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द कवाली नाइट। हम स्टूडेंट्स हैं, वी आर द पार्ट ऑफ यूसी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। हमने कम्युनिटी के लिए सेकंड बड़ी कवाली होस्ट कराई है और ये पहली बार हुआ है कि किसी एसोसिएशन ने कराई है। एंड आई वुड लाइक आर वीपी टू से समथिंग।
1: दैट्स अबाउट इट। दिस इज द बिगेस्ट वन इवन दैट वी हैव इन दिस सेमेस्टर। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट।
2: अमेजिंग।

Hi, this is Hira here, and I'm studying at UC, and this is my first time attending the Qawwali night. I have heard a lot about it, the hype I have heard, and experiencing it, it's so different that it's more better than what I heard. So I would recommend everyone to come here and enjoy it and see how the Pakistani culture is and how vibrant we are. I think it's very important because when we are in Pakistan, we miss our family, we miss our homesickness. And when we have such events, we meet all Pakistanis. वो वाली जो वार्मथ है वो आपको फील करने का मौका मिलता है. सेम आपको अपने खाने खाने का भी मौका मिलता है और अपने जैसे लोग मिलते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और होम सिकनेस थोड़ी कम होती है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आई गेस इन कैमरा. नुसरत फतेह अली खान ऑल द टाइम एंड माई फेवरेट कवाले इज सांसों की माला पे सिमरों में.

0: Anna Mahnoura. I'm the Social Media and Marketing Manager of UCPSA. So over here we have a Qawwali event brought to us by a majority of our different sponsors. And our main goal for this event was to bring the entire community together for a nice fun night and to celebrate the beautiful soulfulness of Qawwali. And so we've done that here. We have a majority of different food stalls. And then we have the Qawwals as well. They came all the way down from Sydney, I believe. So we're having a very good time and we hope to have many more events like this to bring the Pakistani community together in Australia.
1: हमारा काम सिर्फ गाना नहीं है, एक्चुअल में हमारा जो मानना है कि हम लोग एक पैगाम लेके आ रहे हैं और वो जो बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान में बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, और मैं चाहता हूँ और हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम लोग ये पैगाम पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो नई हमारी जनरेशन है उनको भी मालूम पड़े और वो इस फन में ऑलवेज इन रहें.
2: आपका पसंदीदा
1: कव्वाल कौन सा है? जो मेरा मनपसंद कव्वाल है वो जी आप सब जानते हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब. और उनको सुन सुन के ये थोड़ा सा कुछ रहे हम लोग आपको, जैसे आपने अभी फर्स्ट हाफ में सुना है. अब कोशिश जारी है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, हम लोगों को बहुत फेस होता है ये क्वेश्चन. देखें, जहाँ पे मैं समझता हूँ जहाँ पे उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज़ है वो सब गाए हुए उनकी चीज़ें हमारी मनपसंद.
2: और आपको कोई एक पसंदीदा दौर बताइए?
1: हाँ जी, वो हम लोग अल्लाह हूँ मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो उनका कलाम है अल्लाह हूँ जी.
3: Assalamualaikum everyone, my name is Natalia and I wanted to tell you about my experience at UC Qawwali night and it's been fun. I love the food, I love the songs. You should definitely come next year.
4: थैंक यू नतालिया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान है, मैं नतालिया का बड़ा भाई हूँ. नतालिया यहाँ पढ़ती है अभी. आई एम एन अलमना हियर एंड आई केम हियर लास्ट टाइम एज वेल. बोथ टाइम्स इट्स बीन अ हिट ऑफ एन इवेंट एंड आई वुड रेकमेंड फॉलोइंग यूसीपीएसए एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन. थैंक यू.
5: सामीन मुंतजमीन समेत शुरका की गुफ्तगू आपने समाप्त की. इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए.
6: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.
7: अभी आप कैनबरा में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से कव्वाली की बज़्म के बारे में एक रिपोर्ट सुन रहे थे और इस पॉडकास्ट की वीडियो रील भी आप जल्द ही SBS उर्दू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे. एक वक्फा ले रहे हैं. वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी हालात हाजरा में सुनिएगा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम और पाकिस्तान में बजट और इसके अलावा अली खान की डील की खबरों की तरदीद. इसके अलावा भी बहुत कुछ, मगर एक वक्फे के

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: Facebook पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें. SBS उर्दू Facebook पर.
2: SBS की उर्दू नशरियात में मैं हूं रेहान अलवी और आइए अब आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं और करंट अफेयर यानी हालात हाजरा में सुनते हैं. गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम का हवाल, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बाजगश्त और बजट से पहले अहम कानून साजी, उसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद सुनते हैं और इसके फौरन बाद आपको एक ऐसा भूला बिसरा गीत भी सुनवाएंगे जो आज भी कानों में रस खोलता है. मगर सुनिए आज पहले आपको इस्लामाबाद दिए चलते हैं और सुनवाते हैं असगर हयात की ये रिपोर्ट.
3: SBS उर्दू के लिए इस हफ्ते की रिपोर्ट के साथ मैं हूं असगर हयात. सामिन, पाकिस्तान में माली साल 2024-25 का वफाकी बजट ताखीर का शिकार हो गया है. वफाकी बजट 5 जून के बजाय वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कहना है कि बजट में कमी के बायस तरक्याती मनसूबे ताखीर का शिकार हो रहे हैं, जिससे इन मंसूबों की लागत बढ़ रही है.
4: हमारे प्रोजेक्ट्स अनफंड होने शुरू हो गए और अनफंड होने की वजह से उनकी डिलेज 10,000 अरब या 10 ट्रिलियन को तजावुज कर गया है. जो गैर अहम प्रोजेक्ट्स हैं उनको शायद हम जारी ना रख सके.
3: सराय का कहना है कि वजारत पार्लिमानी उमूर को बजट इजलास की तरमीम शुदा समरी वजीर आजम को भिजवाने की हदायत की गई है. वजीर आजम की एडवाइस पर सदर नई समरी के तहत इजलास तलब करेंगे. सामिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिदत इख्तियार कर गए हैं. काबीना में तोसी, बजट साजी और सूबाई मामलात पर सूबाई सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए असद कैसर की क्यादत में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है. पार्लिमानी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक सवाल पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने कहा कि जेल से जब तक पैगाम नहीं आएगा वो वजीर आला रहेंगे.
5: खान साहब ने जेल से फैसला किया कि फलाना वजीर आला नहीं होगा तो कोई भी ताकत उसको ना बचा सकती थी ना बचाया. खान साहब ने कहा कि मैं वज़ीर-आला हूंगा तो कोई भी ताकत मुझे वज़ीर-आला बनने से रोक नहीं पाई. अडियाला जेल से जब तक पैगाम नहीं आएगा तब तक इंशाल्लाह ताला मैं वज़ीर-आला ही.
3: वज़ीर-आला सोहेल अफरीदी ने साबिक वज़ीर-आला अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से ग्रेज किया. अडियाला जेल के बाहर सवाल पर सोहेल अफरीदी ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन मरकजी क्यादत का काम है.
6: हम कॉल देते हैं तो वो भी एमपी हैं, तमाम एमपी जाते हैं उनको भी आना चाहिए. बहरहाल उनकी मसरूफियात होगी, शायद वो नहीं आते. बाकी जो है पार्टी डिसिप्लिन पर एक्शन जो है वो पार्टी का काम होता है और पार्टी की मरकजी क्यादत का.
3: इससे कबल खबर पख्तूनख्वा असेंबली के नाराज 22 पीटीआई अरकान ने इजलास में वजीर आला सोहेल अफरीदी से न मिलने का फैसला किया. पेशावर में मुनाकदा इजलास में नाराज अराकीन सूबाई असेंबली ने पीटीआई गवर्नमेंट की नाकस कारकर्दगी, खराब गवर्नेंस और फंड्स की गैर मुनसफाना तकसीम पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया. सामीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 7 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है. मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं और बड़े बड़े जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है. मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा अपनी अपनी जमातों की इंतखाबी मुहिम को लीड कर रहे हैं. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं कर सकता, वजारत अमूर कश्मीर को खत्म कर देना चाहिए.
7: जो सिकल का फैसले हैं वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो नाम निहाल ही जो वजीर फिर रहा है. वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे.
3: मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वो किसी पर तनकीद करके वोट मांगने नहीं आए बल्कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगने आए हैं.
8: इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया? मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता.

0: हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं।
1: उधर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिलगित में दाखिल होने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने जा रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोककर सुबह बदर कर दिया।
2: हमें आप बाबू से टॉप तक छोड़ेंगे,
3: हम केपीके से नीचे सर,
2: आप हमें केपीके के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। और इनको क्या करेंगे, ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रहे हैं आप।
1: तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने इल्जाम आयद किया है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में तहरीक इंसाफ की क्यादत के दाखिले पर पाबंदी आयद की जा रही है और NOC के नाम पर PTI के साथ इम्तियाजी सलूक करवा रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम जानबूझकर महदूद की जा रही है और इंतखाबी नतीजे पर असर अंदाज होने की कोशिश की जा रही है। सामीन अडियाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के रोत, एक बार फिर इमरान खान की बहनों वकला और पार्टी रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी भी MPS और सूबाई पार्टी रहनुमाओं के हमरा अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। पुलिस की जानिब से आगे जाने से रोके जाने पर वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी और इमरान खान की बहनों ने पार्टी कारकुनान के हमरा नाके पर ही धरना दे दिया। इस मौके पर कारकुनान ने नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जेल में इमरान खान की मुलाकातों की खबरों की तर्दीद की। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत देखती है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है तो डील की अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं।
4: जिसको आपने कैदे तन्हाई में रखा हुआ है, ये अंदर कहाँ जाएगा? कोई भी नहीं गया। ये जान के डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौर ने कहा बिल्कुल फेक है बात ये। जब इनको डर लगता है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं तो उसको जब ठंडा करने के लिए ये बातें शुरू हो जाती हैं, डीले हो रही हैं।
1: उधर अडियाला जेल में ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। SPS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट पाकिस्तान से असगर हयात ने पेश की।
5: अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान रिपोर्ट, और हालात हाजरा के ऊपर हम और भी बहुत से सेगमेंट करते रहते हैं और अक्सर और बेशतर आपने हमारे फेसबुक पेज पे वेब पेज के ऊपर इसे देखा होगा। सबसे अच्छा जरिया हमारे वेब पेज पर जाइए www.sbs.com.au/urdu। इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से मौजूद है, आप उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस के लिए मुफ्त दस्तियाब ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके इस पर उर्दू लैंग्वेज सेट सकते हैं, तो रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, इस तरह आप उर्दू प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आइए आपको एक भूले बिसरे गीत की तरफ ले चलते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये गीत है अखलाक अहमद की आवाज़ में, मूसीकी रॉबिन घोष की, फिल्म दो साथी, पिक्चराइज किया गया ये रहमान और शबनम पर, और इस गीत के बोल हैं, देखो ये कौन आ गया।

अभी आप सुन रहे थे अखलाक अहमद की आवाज में फिल्म दो साथी का ये गीत, और एक वक्फा ले रहे हैं और ये आखिरी वक्फा है, और इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे लोक मुसीकी और पॉप में गाने वाले मारूफ गुलकार सलीम जावेद से, जो ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे और उनकी 80 की दहाई में बड़ी धूम मची हुई थी और उनकी जुगनी भी बड़ी मारूफ रही थी। उनकी बहुत से गीतों की झलकियों के साथ हम आपको उनका इंटरव्यू भी सुनवाएंगे, मगर पहले एक वक्फा, इसके बाद ये तमाम दिलचस्पी।

0: औरत और पैसे दो एक कैसी चीज होती है, दो के किसी एक आदमी को एक भी चीज मिल जाए, ये पैसा ही मिल जाए, तो गरीब आदमी को पैसा मिल जाए तो वो फिर उसको काबू नहीं कर पाता। तो मेरे साथ अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि मैं शुरू से नमाज से जुड़ा रहा हूँ। तो जो बहुत सारी ऐसी बुराइयां, बहुत सारी वो चीजें थी शोबिस की होती हैं, अल्लाह ने उससे मुझे बचा के रखा है। एक तो मेन तो ये फैक्टर है इसका। और फिर मैं काम करता रहा हूँ। मैंने हर दौर में ना, मैंने बहुत तकलीफों के साथ ना ये हासिल की है ये जगह ना, तो मैं इसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। अब उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, नया म्यूजिक लेके आना है, और अपने आप को भी ना वो दोबारा से ना नित नए स्टाइल में लाना है। जैसे अगर आप, एज तो मेरी बढ़ रही है, सबकी बढ़ती है फैक्टर के साथ साथ, मगर आप उसको अपने आप को ना ग्रूम करें थोड़ा सा, कि हमने देखा बड़े बड़े 70 70 साल के लोग इतने हसीन लगते हैं, तो वो अपने आप को ख्याल रखते हैं। मैं ग्रूम करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, खाने पीने का कंट्रोल करता हूँ, ख्याल करता हूँ। फिर म्यूजिक के अंदर ना मैं इन रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बस मेरी असल जो पावर है ना वो है स्टेज की। तो क्योंकि लोग हिट तो हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनका सीन ये होता है कि वो फिर गा नहीं सकते लाइव आके, लाइव गाना एक होता है। तो मैंने शुरू लाइव शो से ही किया था, बाद में कैसेट्स आई, बाद में फिर टीवी पर आया।
1: कौन सी चीज है ऑस्ट्रेलिया की ऐसी जिसने आपको मुतासिर किया?
0: एक तो ना पीसफुल माहौल है यहाँ का ना, बहुत अफरा तफरी नहीं, भगदड़ नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, डिसेंट लोग हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी बात पे ना।

अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हुए गुलकार सलीम जावेद का इंटरव्यू सुन रहे थे, और यहाँ आपको याद दिलाएं कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। और ये भी एक आपके लिए याद दहानी कि हमारे बहुत सी वीडियोज़ और रील्स भी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेजेस पर पेश करते हैं, instagram.com/sbsurdu, facebook.com/sbsurdu या youtube.com/@sbssouthasian/urdu पर जाइए। और इसके अलावा आपको लाइव स्ट्रीम और प्रोग्रामों के मुंतखब हिस्से sbs.com.au/urdu पर मिलते हैं। आप हमें फेसबुक और पर भी पाएंगे, जहां पर मौजूद हैं वीडियोस, अहम खबरों की डेली पोस्ट, तस्वीर के एल्बम्स, ब्रेकिंग न्यूज़ और ऑस्ट्रेलिया भर की कम्युनिटी खबरें। हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बिल्कुल मुफ्त मौजूद है। आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पर और फिर उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए उसमें अपनी फेवरेट लैंग्वेज के तौर पर, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी हमारा नया पॉडकास्ट पब्लिश होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब नया प्रोग्राम हमारा जा रहा होगा ऑन एयर तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसमें एक अंग्रेजी का सेक्शन भी मौजूद है। अगर आप उर्दू समझ सकते हैं मगर पढ़ नहीं सकते तो आप उस सेक्शन में जाके उर्दू के पॉडकास्ट सुन सकते हैं। हम बहुत सी वीडियोज़ भी आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत से अदाकारों और शोबिज़ के अहम अफराद की वीडियोज़ भी मौजूद रहती हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। अब नशरियात बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ पहुँच रही हैं और हम अब आपसे जुमे को फिर मिलेंगे और उसके बाद बुध को दोबारा मुलाकात होगी। और हमारा प्रोग्राम जी जो अगर आप वेब पेज पर सुनना चाहें कैचअप के ज़रिए तो उसे भी आप उर्दू रेडियो पॉडकास्ट सेक्शन में पाएंगे। और जब तक नया प्रोग्राम नहीं आ जाता तब तक वो मौजूद रहता है। तो मुझे तो आप इजाज़त दीजिए, अली जफ़र को मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये वही गीत है जिसका थोड़ी देर पहले सलीम जावेद जिक्र कर रहे थे, लैला ओ लैला, जिसे कोक स्टूडियो के लिए अली जफ़र और रूज फातिमा ने मिलके गाया। रूज फातिमा बिल्कुल बलोची गुलोकारा हैं, छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, 12 साल की उम्र थी उनकी जब ये वीडियो रिलीज़ हुई। उनको सुनिए और मुझे यानी अपने मेज़बान रेहान अलवी को यहीं पर इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया अल्लाह ने के बान।

0: थे जो 2023 सेंसस विच आया सी, अपने से एक बंदे काफी चंगा काम कर दे अपने अपने फील्ड विच, एंड ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी वास्ते करीब करीब $15 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भी हर साल कर दे। तो इन्हों की रिकोगनीशन वास्ते बहुत सारा काम इन्हों का अनरिकोगनाइज चला जाता है, तो वो रिकोगनाइज करने वास्ते असी एक उपराला किया है कि उन्हां दे बारे में दसिया जाए ताकि उन्हां नूं हौसला अफजाई हो।
1: ते श्रेणियां यानी कि केड़ियां केड़ियां कैटेगरीज ने?
0: टोटल एदे विच 8 कैटेगरीज हैगी। ते पहला कैटेगरी है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर विच लास्ट जैसे जसविंदर कौर जी जिहड़े हिलस्टन विच NSW विच काम करदे, उन्हां दे बारे उन्हां दा उन्हां नूं ये अवार्ड मिलिया सी। दूजी कैटेगरी है बिजनेस एंड एंटरप्राइज वास्ते, जिहड़े अगे बिजनेस और एंटरप्राइज वास्ते काम कर रहे हैं और जो पूरे ऑस्ट्रेलिया विच उन्हां दा एक इम्पैक्ट हुंदा है। लास्ट टाइम दीपक पसरीजा जी नूं अवार्ड मिलिया सी जो अपने सोशल एंटरप्राइज तो सीनियर सिटीजन्स वास्ते एक एंटरप्राइज काम कर रहे सीगे, प्राइम मिनिस्टर तक अप्रिशिएट करते उन्हां दो।
1: जी
0: सो टोटल 8 कैटेगरीज अलग अलग फील्ड दी है। द थर्ड कैटेगरीज है वो प्रोफेशनल फील्ड विच है, जो जो अपने प्रोफेशनल फील्ड विच एक्सेलेंस कर रहे हैं उन्होंने काम के लिए असी सपोर्ट कर दे। जिस तरह लास्ट या सतवीर मान जिन्हों अवार्ड मिले सी जो डायरेक्टर ऑफ कॉक्स आर्किटेक्चर है एंड जो वेस्टर्न सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लाइन जिन्होंने एज ए डायरेक्टर के रोल पर काम किया सी। जो फोर्थ कैटेगरी है वो आर्ट कल्चर और म्यूजिक वास्ते हैगी। जिस तरह लास्ट ईयर परवीन कौर बेनेट जिन्हों मिले सी जो सिख ऑस्ट्रेलियन सिख बायलिंगुअल सिंगर एंड डांसर है। जो
1: जी
0: पांचवी कैटेगरी है वो कम्युनिटी सर्विस विच है, सेवा दा भाव तो सिक्की विच है ही। लास्ट जैसे कुलवंत सिंह ढिल्लों जी नूं मिलिया सी जो तास्मेनिया विच अपना सिक्की दा प्रचार करते हैं और ओहदी सेवा भी करते हैं। छठी कैटेगरी है स्पोर्ट्स के लिए, लास्ट लास्ट टाइम क्रिकेटर हैगा यंग तनवीर संघा जी, उन्हां नूं मिलिया सीगा। एदे अलावा दो स्पेशल कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है यंग ऑस्ट्रेलियन सिख ऑफ द ईयर है, यंग बच्चे है जो 30 ईयर्स तो लेस देन है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज ऑस्ट्रेलियन सिख वुमेन ऑफ द ईयर है, जिहड़े भैणां अपने अपने फील्ड विच आप आगे काम कर रहे हैं उन्हां नूं अप्रीशिएट किया जाता है। जैसे लास्ट ईयर हरिंदर कौर जी जो हरमन फाउंडेशन दे हेड है उन्होंने दिता गया सीगा।
1: जी ते जिहड़ियां नामजदगियां ने नॉमिनेशंस ने ओ कद तक इहदियां ओपन ने ते किस आधार ते लोकी भेज सकदे ने? कौन कौन भेज सकदा?
0: गुड क्वेश्चन। सो टोटल हुण नॉमिनेशंस ऑन है। 18 मई नूं ऑनरेबल मिशेल रोलैंड जी जिहड़े अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने ये लॉन्च किया सी नॉमिनेशन वास्ते। हुण ये नॉमिनेशन 14 जून तक है, 14 जून नूं ये खत्म होगी नॉमिनेशंस। तो नॉमिनेशंस कोई भी अपने भेज सकता है और सिंपल सा एक फॉर्म हैगा नॉमिनेशंस का, एंड वो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। 4-5 डिटेल्स अपने बारे में और जिसको नॉमिनेट करना है उसके बारे में लिख के सबमिट कर सकते हो। एंड ये नॉमिनेशंस अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया वैलिड है। बहुत बार ये होता है कि सानू लगता है कि ये नॉर्मल काम हैगा, लेकिन जरूरी नहीं है नॉर्मल काम हो। वो अपने फील्ड में बहुत आगे भी काम कर रहे हो जिन्हों रिकोगनाइज करना चाहिए।
1: जी ते
0: नेक्स्ट
1: अवार्ड्स होने कद ने है?
0: 29th अगस्त नु है गए, एंड एदा है कि 14 जून नॉमिनेशन क्लोज होगा एंड 31 जुलाई नु असी 24 फाइनलिस्ट द अनाउंसमेंट होगा। तो मतलब तीन फाइनलिस्ट इन ईच कैटेगरी इस कहेंगे एंड अनाउंसमेंट 29th अगस्त। एंड इस 29th अगस्त नु जेडे साडे ऑनरेबल मिशेल रोलैंड और जो जेडे अटॉर्नी जनरल है वो भी स्पेशली आवांगे।
1: ते जिहड़े जेतू होणगे उहनां दी चोण किवें किस बलबूते ते कीती जावेगी?
0: ओके नाइस क्वेश्चन। सो टोटल जेडे जो नॉमिनेशंस है लास्ट टाइम ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 200 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਵਰੀ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ 9 ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਫਾਈਨਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ।
1: ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ?
0: मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ कि एक तो आप जिसको भी नॉमिनेट करना है तुसी अपने आसपास देखो जो अपना

0: सही काम कर रहे हैं, उन्होंने नॉमिनेट करना चाहिए था। एंड दूजा, ये अवार्ड सेरेमनी 29 अगस्त को है शंग्रीला विच सिडनी दे विच, तो आके बढ़ चढ़ के आओ, अटेंड करो एंड हौसला अफजाई करो जिन्होंने अवार्ड मिल रहा है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में भी पता चले कि हाँ उनका काम भी अप्रिशिएट होता है ऑस्ट्रेलिया विच।
1: जी जी महेंद्र जी, समय चो समा कढ़न लई ते गलबात करन लई बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी, थैंक यू।
2: यू विद SBS रेडियो।